0: This is Like a Gold.
1: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026, अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में भजन आरती सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
2: Location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: सारी रात Bollywood classics का साथ. सिर्फ Like a Gold पर.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: है लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
4: You know how fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a radio or like a gold, आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
7: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।
1: भटकते देखे

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

सो मैं विसर न जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

है साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

वाजिब तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहब नानक रहन जाई।

अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए धर्म

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Breakfast with Deep Raja.
2: Okay, keep those answers coming in. It's interesting. Is it acceptable to tell a lie? Yes, as a father, you tell me. Let's get back to the music. Good morning.
3: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: Like a gold.
1: I'm literally crying.
2: Same, but my bladder can't take these laughs. I may have to leave.
3: Wait, try one of my always discreet maximum protection pants. Total game changer when the floodgates open up.
2: Seriously?
3: It gives me complete peace of mind, even for my heaviest bladder leak surprises. Go try one on.
2: Fair play. And now I can stay until the last gag.
3: Try Always Discreet's new maximum protection pants for heavy bladder leaks.
0: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Great news, Thadikalal Rainers Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Thadikalal Rainers Lane, 287 Rainers Lane, Pinna, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Thadikalal Rainers Lane.
6: वेलकम टू द जंगल.
7: फिल्म बिल्कुल फेक.
6: हमारी फिल्म आर्मी वाली
8: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
7: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
6: स्टार कास्ट है
7: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
9: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
7: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
10: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
11: मैं किस लिए फिल्म में.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
13: Kajal's Couture for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
14: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 the Broadway Southall, UB1 1LR.
13: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories and stylish outfits for men and women.
14: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
13: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
14: Visit kajalscouture.co.uk.
15: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
16: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
17: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
18: Be part of a historic grand opening.
19: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
18: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
19: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
18: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
20: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
20: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
20: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
21: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Father's Day special is sponsored by Jaimin Foods.
22: Jaimin Foods ke ethnic food varieties, jahan hai namkeen, khakra, chikki, son papri, mango pulp aur bahut kuch. Available at your nearest ethnic grocery stores.
23: Jaimin Foods, the ethnic taste of India.
24: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: रफी साहब की आवाज में, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में अपने जमाने का सुपरहिट गाना जिसे लिया था फिल्म आशा से, जो आई थी 1980 में। और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां कहीं भी हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। ऋतु शर्मा एक बार फिर से आपका साथ देने के लिए स्टूडियो में हाजिर है और ये साथ चलता रहेगा आपसे लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक। मौसम काफी गर्मा गर्म है एंड आई एम श्योर आप इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, या फिर हमारे कुछ साथी कह रहे होंगे हाय गर्मी, हाय हाय गर्मी। तो उनको बता दूं कि ये जो आने वाला वीक है ना, ये और भी ज्यादा गर्मा गर्म है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, आपके दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए हम है ना आपके साथ 24 घंटे सातों दिन। बस आप साथ देते रहिए। प्रोग्राम में जैसे हमेशा खूबसूरत गीत बजते हैं, आज भी बजते रहेंगे और आज कुछ खास भी है। क्या खास है बताऊंगी आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको बता दें कि आज भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं तो 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और जून से पहले पहले, जिसमें बस कुछ ही दिन बचे हैं, आप 75 pound का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे जब आप 1000 pound से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, एंड ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pound। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आपको बताते चलें कि आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो मैचेस होने वाले हैं उनमें पहला मैच है बेल्जियम और ईरान के बीच में। उसके अलावा आज स्पेन और सऊदी अरबिया की टीम भी भिड़ेंगी। लेकिन याद दिला दें कि आपको रैक लॉ सॉलिसिटर से 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस मिल सकता है जब आप मेंशन करते हैं लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: Yeah.

0: श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाजें 1989 की फिल्म चांदनी से लिया था ये गाना, शिवहरी का म्यूजिक और यश चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म जिसे आप सभी ने पसंद किया है। और लीजिए प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। आज है संडे का दिन, 21 जून है आज, और आज हमारे बहुत सारे साथी यानी यूके वासी सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे। यस, तो फादर्स डे की आपको ढेरों ढेरों बधाइयाँ। और बस यही कहूँगी कि कभी भी किसी के भी सर से फादर पिता का साया उठना नहीं चाहिए, क्योंकि फादर एक ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी के जीवन में बहुत ज़रूरी है। देखिए किसी ने कितना खूबसूरत लिखा है कि उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हर मुश्किल में हौसला बढ़ाया, अपने दुखों को छुपाकर सदा पापा ने हमें हंसना सिखाया। और पापा ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी अपने बारे में नहीं, हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। तो आज हम फादर्स डे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और इसी के चलते हम यहाँ से मिठाइयाँ बांटने वाले हैं। यस, अम्बाला के साथ मिलकर लाइका रेडियो नेटवर्क आपको इस आवर में नहीं, सेकंड आवर में नहीं, मतलब तीनों आवर में मिठाई के डब्बे बांटेंगे और फादर्स डे की खुशी को हम दोगुना करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली फादर लिखकर हमारे स्टूडियो व्हाट्सएप नंबर पर भेजना होगा। अगर आप जीतते हैं तो आपका नाम मैं अनाउंस करूंगी, आपको मिलेगी एक मिक्स मिठाई का डिब्बा। और वो सेट है, कौन सी मिठाई आपको मिलेगी, अगर आप चाहें कि मिठाई बदल जाए तो दैट्स नॉट पॉसिबल, मिठाई आपको वही मिलेगी जो ऑलरेडी प्री सेलेक्टेड है। तो फटाफट कीजिए और हमें भेज दीजिए लिख कर अम्बाला हमारे व्हाट्सएप नंबर पर।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. WhatsApp message Like a Gold now on 0744-232323.
1: तो आपको बता दें कि प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है और इस कंपटीशन में हम फादर्स डे के उपलक्ष में आपको मिठाई का डब्बा देने जा रहे हैं। लाइका टीम अंबाला के साथ मिलकर ये मिठाइयां आपको बांटने वाली है। तो जल्दी से फादर वर्ड लिखिए और भेज दीजिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। I repeat once again.
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Like a Gold.

0: लीजिए लता जी और किशोरदा की आवाजों में था खूबसूरत गाना जिसे आप सभी ने पसंद किया है और प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। इनफैक्ट 38 मिनट्स जा चुके हैं और प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है। इस आवर में फादर्स डे हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसीलिए अम्बाला के साथ मिलकर लाइका रेडियो नेटवर्क आपको मिठाई का एक शानदार मिठाई का डिब्बा देने जा रहे हैं और आपके ढेरों एंट्रीज हो चुकी हैं। इस वाले आवर के एंड में बताऊंगी कि मिठाई का डिब्बा किसने जीता है, लेकिन अगर आपने नहीं जीत पाया है तो फिकर नॉट, नेक्स्ट वाले आवर में भी कॉम्पिटिशन होगा और उसके बाद वाले यानी कि लास्ट वाले आवर में भी कॉम्पिटिशन है। तो बस रेडियो सेट्स के पास बैठे रहिए और साथ देते रहिए और प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में जोड़ी नंबर वन होता है। आज की जोड़ी नंबर वन कौन सी है बताऊंगी आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: WhatsApp message like a gold now on 07444 23 23 23. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो याद रखिए साउथॉल ट्रैवल, उन्हें फ़ोन कीजिए 0208-574-8410 पर और अपनी फ्लाइट्स के साथ साथ आप पूरी हॉलीडे डील्स बुक कर सकते हैं। दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है। 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं और ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीत चुके हैं।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
8: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
7: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
8: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
9: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu chhe ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment laine avi rahya chhe Sakhna Rejo Husband ji. Leena Shah ane Samir Shah sathe hasya ni full guarantee. Fridays, 26 June, 27 Patidar Samaj, Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखना रे जो हस्बैंड जी।
8: Two businesses.
10: Same town.
8: Same service.
10: One appears on page one of Google.
8: The other doesn't.
10: Guess which one gets the customer?
8: The truth is brutal.
10: The first page of Google gets the business.
8: Everyone else gets what's left.
10: So here's the real question.
8: When your customers search for what you sell, do they find you?
10: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: ફાધર સન નો બોન્ડ જેટલો સ્પેશિયલ છે એટલી જ સ્પેશિયલ ફિલ્મ આવી રહી છે.
12: અંકલ તમે પહેલાથી આવા જ છો.
13: આવા એટલે કેવા?
11: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર.
13: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તો બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજથી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવીને પૂછે.
11: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધી ઇમોશન્સ, લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાસ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
13: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર.
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
14: High appreciation.
15: In Dubai.
11: London. Good news. Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है

0: प्यार है तो फिर।
1: यस, आज फादर्स डे है और इसीलिए हमने सभी फादर्स को ये गाना डेडिकेट किया। और इसके अलावा जासू जी कहती है, ऋतु ये गाना मेरे नाम पर भी कर दो। चलिए, मैंने ये गाना आपको भी दिया। महेंद्र बजारिया जी, आपको भी ये गीत पसंद है और जिन भी साथियों को ये गीत पसंद है, सभी के नाम पर जाता है ये गाना। और इस आवर में कॉम्पिटिशन चल रहा है और विनर कौन बने हैं, जिन्हें मिल रहा है मिठाई का डिब्बा, उनका नाम मैं बताऊंगी अब से बस थोड़ी ही देर में।
2: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मट, catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राजधारी गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
1: तो करेंसी अपडेट में आपको बताते चलें कि आज

0: आयशा जी की आवाज में वक्त फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले जसपाल सिंह की आवाज में गीत गाता चल लो साथी गुनगुनाता चल। प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, सेकंड आवर की शुरुआत हुई है इन दो गीतों के साथ, और इसमें एक बार फिर से आपका स्वागत है। संडे को सेकंड आवर में हम सुनते हैं जोड़ी नंबर वन, और आज की जोड़ी है जूही चावला और आमिर खान की जोड़ी, जिनके दो गाने बस सबसे थोड़ी देर में बजाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कुकी बनी है हमारे फर्स्ट वाले आवर के कंपटीशन की विनर, और आपको बता दें कि आपको ये मिठाई जो हमने आपको दी है अंबाला की ओर से, अपने नियरेस्ट अंबाला स्टोर पर जाकर खुद कलेक्ट करनी होगी, ठीक है? तो बस आप जल्द से जल्द चले जाइए और लेकर आइए। और जो कंपटीशन नहीं जीते हैं उनको बता दूं कि लास्ट एंड फाइनल आवर में भी अंबाला का कंपटीशन होगा, और आपको मिलेगा मौका जीतने का मिठाई का बॉक्स। कुकी कहती है कि मैंने पहली बार कुछ जीता है, और देखिए आपने पहली बार कुछ जीता है और वो भी एक मिठाई का बॉक्स, वो भी अंबाला से, क्या बात है। वैसे ही आपका नाम इतना मीठा है और मिठाई खाएंगी तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू साथ देने के लिए। और इस वाले आवर में भी एक कॉम्पिटिशन है, और वो क्या है उसके बारे में जरूर बात करूंगी, लेकिन पहले ये बता दूं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज आपको 1 pound के बदले में मिलेंगे 124 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और आपको याद दिला दें कि आप 75 पाउंड्स का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे जून से पहले पहले जब आप पैसा भिजवाते हैं 1000 पाउंड्स से ज्यादा, एंड ऑल्सो वन गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आज स्पेन और सऊदी अरबिया के बीच में मैच होगा, ट्यूनिशिया और जापान की टीमें भिड़ेंगी, और इसके साथ साथ आज बेल्जियम और ईरान की टीमों के बीच में भी मैच होगा। लेकिन आपको फ़ायदा मिल सकता है कैसे, अगर आपकी कोई ऐसी बात है जिसे आप किसी बारे में लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप रैक लॉ सॉलिसिटर से 15 मिनट फ्री में बात कर सकते हैं जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Fever Tree Mediterranean Tonic Water. Who are you? Usually the mixer. The tea in G&T. But your delicate fragrance, hints of lemon thyme. When the tea is this good. Do you even need the G? Fever Tree, straight up or mixed. It's a matter of taste.
4: Ye hai.
5: Like a gold.
4: Like a gold.

0: जी हाँ, ये है हमारी आज की जोड़ी नंबर वन। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में जूही चावला और आमिर खान पर पिक्चराइज था ये गाना, जिसे आपने सुना और अभी सुनवाऊंगी दूसरा गाना। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं आज के कॉम्पिटिशन की। और ये कॉम्पिटिशन है एक गुजराती शो के बारे में, जिसे हमने कल भी चलाया था। लाइका रेडियो नेटवर्क जेज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर आपको मौका दे रहे हैं दो टिकट्स जीतने का, एक गुजराती स्टेज कॉमेडी जिसका नाम है सखना रहजो हस्बैंड जी, जिसमें लीना शाह और समीर शाह ने काम किया है, और ये फ्राइडे 26 जून को होने जा रहा है 27 पाटीदार सेंटर वेम्बली लंदन में। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजना है हस्बैंड, लिखकर भेजिए हस्बैंड। और इस वाले आवर के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन है वो लकी विनर जिन्हें दो टिकट्स जीतने का मौका मिलेगा और इस गुजराती प्ले को देखने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से हस्बैंड लिखकर, अपना नाम लिखकर, अपना टेलीफोन नंबर लिखकर और अपना ईमेल एड्रेस लिखकर भेज दीजिए हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message Like a Gold now on 07444-232323. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: लीजिए हमारी आज की जोड़ी नंबर वन का ये दूसरा गाना, जिसे लिया था फिल्म इश्क से उदित नारायण और विभास शर्मा की आवाजें। और आपका मैसेज आया है सुनील जी, कहते हैं जोड़ी नंबर वन का एक और गीत आप सुनना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो गाना आज के प्रोग्राम में आपको सुना सकूं, क्योंकि नॉर्मली जोड़ी नंबर वन में मैं दो ही गाने बजाती हूं। लेकिन आपको बता दें कि कल से रवि शर्मा जी के शो में मंडे टू फ्राइडे, कल पूरा वीक और नेक्स्ट पूरा वीक, यानी कि दो वीक मैं आपके साथ रहूंगी। तो यानी आज से जो हमारा साथ शुरू होगा वो पूरे दो वीक तक चलेगा, क्योंकि रवि शर्मा जी छुट्टी पर जा रहे हैं, हॉलिडे मनाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि मज़े से घूम कर आएँ, उन्हें एक अच्छा ब्रेक मिलना चाहिए। तो वो दो वीक बाद लौट कर आएंगे और इन दो वीक में मैं ऋतु शर्मा आपके साथ रहूंगी। तो ये जो गाना आप आज सुनना चाहते हैं कल सुना दूंगी तो चलेगा? आज के शो में बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, और देखिए इसीलिए आज मैं आपके मैसेजेस भी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि जब मैं स्टूडियो में आई तो मुझे एक इश्यू मिल गया। अब यहाँ इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, तो कभी हमेशा अच्छा चलता है, लेकिन कभी कभार कुछ हो जाता है। तो जब यहाँ आई तो जो इश्यू था उसमें मेरा सारा दिमाग लग गया, तो मुझे समय ही नहीं मिला उसे सॉर्ट आउट करने के लिए आपके मैसेजेस पढ़ने का। तो इसलिए आज आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाई, लेकिन आपका साथ मुझे भरपूर मिल रहा है हमेशा की तरह। आई एम श्योर आप माइंड नहीं करेंगे आज के लिए, है ना? थैंक यू। और आपको बता दें कि प्रोग्राम में कॉम्पिटिशन चल रहा है, ढेर सारे आंसर्स मुझे मिल चुके हैं, और विनर कौन बनेंगे मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन आज इंटरनेशनल योगा डे है, हमारे पंडित आपका नाम भूल गई, देखो कितनी मैं भुलक्कड़ हो रही हूँ आज। जल्दी से मैसेज लिख के भेजिए आपका नाम क्या है। पंडित ज्योति प्रकाश दुबे जी, यस आपने हमें याद दिलाया है। और वैसे हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है, और इस बार आज का जो है वो 12वां इंटरनेशनल योग दिवस है। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को UNGA में अपने भाषण के दौरान योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 177 कंट्रीज का समर्थन मिला, और तब से लेकर आज तक हर साल 21 जून के दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और ये बहुत अच्छा है, योगा से अच्छा कुछ भी नहीं, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको मेंटल पीस देता है, बहुत फ़ायदे हैं इसके। अगर आपने अभी तक योगा नहीं किया है तो आज से ही शुरू कीजिए। रोज 5 मिनट या 10 मिनट 24 घंटे में से आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। दुनिया में जानते हैं सबसे कीमती चीज़ क्या है? आपका अपना शरीर। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप कितने भी अरबों के खरबों के मालिक हों, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सारे काम काज को एक तरफ रख कर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ का ख्याल रखिए। आप सोना चांदी रुपया पैसा कैसा संभाल के रखते हैं, लेकिन ये जो बॉडी आपको भगवान ने दी है ना बिल्कुल मुफ्त में, उसका ध्यान ही नहीं रखते। तो आज से प्रॉमिस कीजिए कि अपना ख्याल रखने के लिए कम से कम 5 मिनट 10 मिनट 15-20 जैसी आपकी श्रद्धा योगा करना शुरू करेंगे, फिर देखिए आप अच्छा फील करेंगे। और मुझे बताइए कि आज के दिन से किसने शुरुआत की, कल आप सबसे पूछूंगी। लेकिन फिलहाल बढ़ जाते हैं आगे।
1: दिस इज ऋतु शर्मा।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
0: तो बिल्कुल लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट आ चुका है, जिसे होस्ट किया है दीप राजा ने, और इस बार का टॉपिक है साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। अच्छा टॉपिक है। कल हम एक चैरिटी इवेंट में गए थे, वहाँ पर मिताली राज आई थी, जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रही हैं, और उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई कि क्या डिफरेंस होता है मेल स्पोर्ट्समैन में और फीमेल स्पोर्ट्समैन में। तो अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर, अच्छा लगा उनसे मिलकर, और आप भी इस बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं। आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुनिए, ये अवेलेबल है यूट्यूब पर, Amazon पर, Spotify पर, और जितने भी स्ट्रीमिंग लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब जगह आपको मिल जाएगा।
1: Like extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Fevertree Mexican Lime Soda. You're not like other mixers. You're zesty bite, twist of yuzu. Sure, you're perfect with vodka. But even on your own, you make the most exquisite soft drink. Fever Tree. Straight up or mixed. It's a matter of taste.
4: Like a goat.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
8: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज. कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823.
11: Great news, Thade Kalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Thade Kalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5F5EJ. Quality, value and freshness only at Thade Kalal Raiders Lane.
12: Welcome to the jungle.
13: Film बिल्कुल fake.
12: हमारी film army वाली.
14: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
13: Danger एकदम real और survival skills zero.
12: और star cast है.
13: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
15: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने gun पकड़ा था क्या?
13: Welcome to the jungle in cinemas 26 June.
16: अरे तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
17: मैं किस लिए फिल्म में?
18: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
19: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
20: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
21: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
20: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
21: Plus, Leica listeners get 10% off

0: मोहम्मद रफी साहब को देखते हैं या उनके बारे में सुनते हैं तो सब कहते हैं कि वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे, लेकिन जब इस तरह के गाने सुनते हैं जिसमें होती है इतनी शरारत, तो मैं ये सोचती हूँ कि इतना सीधा साधा आदमी गाने में इतनी शरारत कैसे डाल सकता है। लेकिन फिर वही, यही तो कमाल होता है एक अच्छे और सच्चे कलाकार का। तो ये गाना आप सबने एंजॉय किया और अब मैं आपको बताती चलूं, चलिए थोड़ी ही देर में बताती हूँ कि आज के कंपटीशन का विनर कौन बनता है। रेडियो सेट्स के पास आ जाइए।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 125 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 101.05 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: तो आपको बताते चलें कि ये जो कंपटीशन चल रहा था जिसे जेज एंटरटेनमेंट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको देने वाले थे दो टिकट्स सखना राग्यो हस्बैंड जी, इस कंपटीशन में हमारे ढेर सारे साथियों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जो विनर बनी है उनका नाम है मीरा व्यास। आपको मिलते हैं दो टिकट्स और आप जा रही हैं इस शो को देखने के लिए। और आपको बता दें कि ये शो सिर्फ लंदन वेन्यू के लिए है, जो हो रहा है 27 पाटीदार समाज फैमिली में, और ये है फ्राइडे 26 को। और टिकट्स जो है वो आपको वेन्यू के रिसेप्शन से उसी दिन शाम को मिलेंगे जिस दिन ये शो है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मीरा, बधाइयाँ, मज़े के साथ शो देख कर आइए और फिर हमें बताइए कि ये नाटक आपको कैसा लगा। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी है कंपटीशन जिसमें किन्हीं दो लोगों को मिलेंगे दो मिठाई के डिब्बे, और वो कौन होंगे उसको जानने के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना, और प्रोग्राम का लास्ट आवर भी सुनना पड़ेगा। तो चलिए साथ जरूर देते रहिए।
3: Like our gold. Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
4: Hi, hello, Ketcho, Hoochu, Ketchi, Daveyana, Ashu, Taigo, Arara, Public Demand, Hariti, Aave, Raichu, London, Maru, Navu, Natak, Laine, Patni, Premier League, Etleke, PPL, yes, from 3rd July till 12th of July, wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows, Yaad Rakhjo.
5: Me Premier League shows at Risley, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410, दैट्स 8574-8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
8: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
9: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location,
5: high appreciation
2: in Dubai.
9: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
5: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
12: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
14: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Gold.

0: साधना जी की संजय खान की फिल्म एक फूल दो माली से था ये गाना, और उससे पहले आपने रफी साहब सुषमा श्रेष्ठा की आवाजों में हम किसी से कम नहीं फिल्म का गीत सुना। प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है, और इस आवर में हमेशा हम थ्री वर्स गेम खेलते हैं, लेकिन आज है कॉम्पिटिशन, इसलिए आज हम गेम नहीं खेलेंगे, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स का सिलसिला जरूर शुरू होगा। और आज के कॉम्पिटिशन को शुरू करने से पहले आप सबको याद दिलाऊंगी कि आज साल का सबसे लंबा दिन है। जी हाँ, 21 जून है आज, और आज के बाद यानी कि कल से एक मिनट, दो दो मिनट थोड़ा थोड़ा करके दिन छोटे होने लगेंगे। लेकिन मौसम में गर्मी तो शायद इस पूरे वीक रहेगी, लेकिन आज के बाद से दिन छोटे होना शुरू हो जाएंगे। और चलिए अब आगे बढ़कर बात कर लेते हैं आज के कॉम्पिटिशन की। फादर्स डे है आज, सभी को ढेरों बधाइयाँ, हैप्पी फादर्स डे। और इसी के लिए, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए लाइका रेडियो नेटवर्क अम्बाला के साथ मिलकर आपको देने जा रहे हैं एक मिक्स्ड मिठाई का बॉक्स, और आप हमारे हर शो में जीत सकते हैं। अगर मेरे शो में नहीं जीत पाए तो मुझसे जो अगले वाला शो होगा उसमें भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है फादर, बिकॉज इज फादर्स डे, तो फादर लिखना है, और हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर लिख, हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। और विनर का नाम मैं अनाउंस करूंगी इस वाले आवर के एंड में, और इस बार एक नहीं दो लोगों को मिठाई के बॉक्स मिलेंगे, क्योंकि दो विनर मैं चूज करूंगी, और आपको वो मिठाई का बॉक्स खुद अपने घर के पास जो भी अम्बाला स्टोर है वहाँ से जाकर उसे लेना पड़ेगा। और आपको हमारे कोई लाइका के जो मेंबर हैं वो भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि कब से ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है, कब आप जाकर वहाँ ले सकते हैं। तो बस फटाफट कीजिए, हमारे को भेज दीजिए अपना मैसेज जिस पे लिख दीजिए फादर, और कर लीजिए कॉम्पिटिशन में एंट्री, जीतने का मौका पाइए एक मिठाई का डिब्बा फ्रॉम अम्बाला।
1: WhatsApp message Leica Gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय एसबीआई ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। और जून के पहले पहले आपको मौका मिल सकता है एवरीडे 75 पाउंड्स का वाउचर जीतने का, जब आप 1000 पाउंड से ज्यादा मनी ट्रांसफर करते हैं, एंड ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस टू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Fevertree Ginger Beer. There's no one quite like you, is there? That fiery character. Warming undertones. Mixed, you make a spirited Moscow Mule. But even on your own, you still have the most delectable kick. Fevertree. Straight up or mixed. It's a matter of taste.
3: Yeah, hey, Leica Gold.
4: Leica Gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
7: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
8: Are we there yet?
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
9: How? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simzy before we left London.
9: Simzy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
7: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
11: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
7: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
11: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
7: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
12: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
13: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: Be part of a historic grand opening.
16: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
15: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
16: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
17: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
18: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
19: Great news, Tadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5F5EJ. Quality, value and freshness only at Tadikalal Raiders Lane.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: यस, इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं हरिहरन, जिनकी आवाज में लम्हे फिल्म से था ये गाना। और प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है, कुछ देर बाद बताऊंगी कि कौन बने हैं आज के कंपटीशन के विनर। लेकिन उससे पहले शुरू करेंगे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला और सुनवाएंगे आपको पहला गाना।
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्या खूबसूरत गाना है लता जी की आवाज में। अनाड़ी फिल्म से लिया था ये गीत और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना। और आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं और देखते हैं कि आज इस कंपटीशन के कौन विनर बनते हैं।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: किन्हें मिलते हैं आज दो मिठाई के डिब्बे, क्योंकि इस वाले आवर में मैं दो विनर चूज करने वाली हूँ। तो रेडियो सेट्स के पास ही रहिए, बहुत जल्द बताऊंगी कि वो कौन है जिन्होंने जीता है आज के फादर्स डे वाला कंपटीशन।
1: रिचि शर्मा ऑन लाइक अ गर्ल।
0: लेकिन फिलहाल आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गीत।
3: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: सपनों की तुम तस्वीर।
1: जी हाँ, ये था हमारे आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का दूसरा गाना, और ये गाना मैंने आज बड़े दिनों बाद शो में शामिल किया है, जिसे आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है। तो बस थोड़ी ही देर में अनाउंस करने वाले हैं आज के कंपटीशन के विनर का नाम। आप हमारा साथ देते रहिए, ये है लाइक ऑन रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर ऋतु शर्मा है आपके साथ पूरे एक बजे तक।
2: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
1: और आपको याद दिला दें कि समर का टाइम है, हॉलिडे जाना चाहते हैं तो एक ही नाम याद रखिए, साउथ हॉल ट्रैवल। उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर और अपने टिकट्स बुक कराइए। हॉलिडे डील्स आप बुक कर सकते हैं, दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स, सब कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड है। 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं और ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीत चुके हैं।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Fever Tree Mediterranean Tonic Water. Who are you? Usually the mixer. The tea in G&T. But your delicate fragrance. Hints of lemon thyme. When the tea is this good. Do you even need the G? Fever Tree, straight up or mixed. It's a matter of taste.
4: ये है Lyca Gold, 10:35 AM.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730098823।
9: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
10: 4 beers, please, garçon!
9: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
11: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026, अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। सैटरडे 18 जुलाई, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में। भजन, आरती, सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu chhe. Ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment. Laine avi rahya chhe. Sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Samir Shah saathe. Hasyani full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma. Ratna 8 vage. Tickets booking mate. Visit karo eventbrite.co.uk. Call karo video अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखना रहे जो हस्बैंड जी।
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड्स से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
16: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TWPays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट TWPays.com/Laika या कॉल कीजिए 02031299840। TWPays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत।
17: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
18: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
17: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
18: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे,
17: दर्शन पण अने यूरोप पण।
18: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
17: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
18: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
19: लंदन, गुड न्यूज, आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस, परफेक्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रेडर्स, टेकअवेज एंड केटरर्स। आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग। फुल अटैक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिजवे, साउथ हॉल, UB24AX। वंस यू विजिट यू कम अगेन एंड अगेन।
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Father's Day special is sponsored by Jamin Foods.
20: Jamin Puff Bites, जो है lemon chili, मस्त मसाला और Mexican salsa जैसे flavors में available.
21: Jamin Puff Bites, available at your nearest ethnic grocery stores.
2: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: यस, किशोर दा और लता जी की आवाजों में ये था अपने जमाने का सुपरहिट गाना और जिसे आप सबने पसंद किया है। सुबह से लेके अब तक आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं क्योंकि ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स भी हैं प्रोग्राम में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी ही देर में मैं बताऊंगी कि आज का फादर्स डे वाला कॉम्पिटिशन किसने जीता है, तो तैयार हैं नाम जानने के लिए? चलिए बताती हूँ। हमारे आज के इस फादर्स डे वाले कॉम्पिटिशन के विनर बने हैं, जिसमें आपको मिलने वाला है एक मिठाई का बॉक्स अंबाला स्वीट्स की ओर से, जिसे जीता है रोजी रजीना आपने एंड साथ में दिनेश पोपट जी आपने। दोनों को ढेरों बधाइयाँ, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मज़े के साथ फादर्स डे मनाइए और हम आपको बताएंगे कि आप कब अंबाला जाकर अपना मिठाई का बॉक्स कलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने नियरेस्ट अंबाला स्टोर पर जाकर ये मिठाई का बॉक्स लेना होगा। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो आज नहीं जीते हैं, आपको बता दूं कि हर शो में ये कंपटीशन होने वाले हैं, तो ज़रूर सुनिए हमारा लाइक और रेडियो नेटवर्क और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए। और बस आप सब जानते ही हैं कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Women's cricket updates presented by Carmel Prabhakar are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। कमल जी हमारे साथ हैं। हेलो कमल जी, बताइए।
3: रिचि जी गुड आफ्टरनून। पहले तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स इन द वर्ल्ड। सो टू क्रिकेट नाउ, वी हैव टू अमेजिंग गेम्स गोइंग टुडे। पहले तो एक है श्रीलंका अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। श्रीलंका

0: बड़े सुंदर लग रहे थे, राज भी सब, यू नो ऑल द टीम यस्टरडे विद सम द एक्स कैप्टन ऑफ इंडिया लेडीज टीम के साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे आप लोग।
1: जी बिल्कुल, थैंक यू
0: थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।
1: थैंक्स, बाय बाय।
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: This is Leica. A gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज 1 pound आपको देगा 125 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LEICA Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: So gold rate is 101.05 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
5: Ye hai.
6: Leica Gold.
1: जी हाँ बिल्कुल, आप Leica Radio Network ही सुन रहे हैं और बस अगला गीत हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार गोल पर होंगी अनुराग, Leica Radio Manchester पर होंगी फजीला और Leica Radio Midlands पर आपका साथ देंगे नीरज। लेकिन मेरी आपसे मुलाकात कल फिर से होगी रवि शर्मा जी के शो में, क्योंकि रवि शर्मा जी हॉलीडेज पर गए हैं इसलिए उनके शो में मैं आपका साथ दिला दूंगी। लेकिन आपको याद दिला दूं कि अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर सुन सकते हैं। अगर आप बैक टू बैक क्लासिक्स सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है हमारा Leica Gold 2। 90s के गीतों को सुनना चाहते हैं तो हमारे पास है आपके लिए Leica Radio 90s। और अगर पंजाबी गीतों के शौकीन हैं तो आप सुन सकते हैं Leica Radio पंजाबी ऑनलाइन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए एंड ऑफ कोर्स Leica पॉडकास्ट भी है, Leica एक्स्ट्रा। तो जब जी चाहे जो सुनिए, लेकिन हमें ज़रूर सुनते रहिए, जो भी आप चाहे, Leica से दूर मत जाइए। बस कल तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मौसम को एंजॉय कीजिए एंड जो आज के कॉम्पिटिशन के विनर बने हैं उन सभी को वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।
7: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
5: Leica Gold.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots, learn coding. Use code LEICA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/Leica or call 07533065549.
10: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
11: Add Desi Tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
10: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
12: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
13: Welcome to the jungle.
14: Film? Bilkul fake.
13: Hamari film army wali.
15: Aur uske liye aap sabhi

0: हेलो एंड गुड आफ्टरनून। सबसे पहले करेंगे मौसम की बातचीत। इस वक्त का मौसम है ग्रेटर लंदन का बहुत ही कमाल का। धूप खिली हुई है और गर्मी से हो रहे हैं लोग रूबरू। टेम्परेचर अभी थोड़ी देर में।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
0: स्वागत है आप सभी का गोल्डन राग संग शुरू से सजा सुपर संडे वाला ये शो आप सभी के लिए। मैं हूं आपके साथ अनुराग और बैक टू बैक गानों के साथ करेंगे इस घंटे की शुरुआत। और एक नहीं दो दो कंपटीशन कर रहे हैं आपका इंतजार बैक टू बैक गानों के बाद होकर जिग।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: Travel Hub.
3: At all protected.
2: Leica. On Rug with Golden Rug.

0: सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। सागर फिल्म का ये खूबसूरत गाना किशोर दा की आवाज में। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुपर संडे वाली महफिल में। मैं हूँ आपके साथ अनुराग। चलिए थोड़ी सी रोचक जानकारी आपको देते हैं। आरडी बर्मन साहब का संगीत और जावेद अख्तर साहब ने क्या कमाल के गाने इस फिल्म के लिए लिखे। अवार्ड्स की बात करें तो इस फिल्म ने अवार्ड की झड़ी लगा दी थी। फिल्म के की सबसे बड़ी यूएसपी किशोर दा की आवाज में सागर किनारे और अभी जो आपने गाना सुना, चेहरा है या चांद खिला है, सागर जैसी आंखों वाली, ये गाना आज भी उतना ही फ्रेश, उतना ही तरोताजा और आज भी किशोर दा के फैंस के लिए उनकी आवाज में ये नंबर वन गाना माना जाता है। लेकिन जहां पर किशोर दा को उनकी प्लेबैक सिंगिंग के लिए ऑस्कर माफ कीजिएगा फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, उसके अलावा कमल हसन साहब ने भी फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया था। लेकिन फिल्म सागर की फिल्मिंग के दौरान कमल हसन साहब अपनी तमिल की तमाम सारी फिल्मों की डेट्स पर मौजूद नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उनको काफ़ी दिक्कतें हुई। लेकिन उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। सागर फिल्म पूरी तरह खत्म होने के बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने काफ़ी दिनों तक हिंदी सिनेमा से दूरी भी बनाकर रखी, क्योंकि उनकी वजह से, सागर फिल्म की वजह से उनके हाथ से कई तमिल फिल्में जो निकल गई थी। ऐसी बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं लेकिन वक्त के साथ आपके साथ शेयर करता रहूंगा। याद रखिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं, बहुत सारी मिठाइयां आने वाली है आपके घरों में, तो इंतजार यानी कि इस बार पक्का सब्र का फल होने वाला है मीठा। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर इंडिया में आप भी पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 124 रुपीज़ 5 पैसे। याद रखें अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Listeners, we interrupt the airwaves to share an incredible discovery. The reason why Britain hasn't been so great of late is because the country hasn't been eating enough Weetabix. We must get to work in rebuilding Great Britain, Bix by Bix. By delivering Weetabix to whoever plans the traffic diversions, to delivery drivers who can't seem to find your house,
3: and people who don't stack the dishwasher properly.
2: To Britain, we must say, have you had your Weetabix?
1: This is the Leica Radio Network, across London, Manchester and the Midlands.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
11: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds £1,000 just for switching.
10: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
11: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
10: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
12: Gajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
13: Discover Gajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
12: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
13: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
12: Gajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
13: Visit gajalscouture.co.uk.
14: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
12: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
14: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
15: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
16: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
17: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
16: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
17: Rich, authentic taste every single time.
16: Royal Chai, brewed for business.
17: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
18: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
19: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par, DAB Digital Radio par, Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
20: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Bhai Rafi saab ki awaaz mein Janwar film ka ye khoobsurat gaana sunne ke baad ab kuch meetha ho jaye aur sabse pehle aap sabhi ko happy father's day. सारे पापाओं को सारे फादर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत जिम्मेदारी वाला काम आप लोग करते हैं और आपके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं. चलिए फादर्स डे के लिए हो जाइए तैयार. कंपटीशन नेक्स्ट.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: तो इस बार फादर्स डे के मौके पर हमने हाथ मिलाया है अंबाला स्वीट्स के साथ, जो आपको दे रहे वेट इन बॉक्स मिक्सड मिठाई एवरी आवर अक्रॉस ऑल ऑफ आवर स्टेशंस. आपको करना क्या है, सिंपली लिख देना है हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर फादर FATHER और उसे सेंड कर देना है. अगर विजेता का नाम हम लेते हैं इस आवर के लास्ट में या एवरी आवर के लास्ट में, तो वो उसको करना क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. मिठाई खानी है तो आपको अपने नियरेस्ट अम्बाला स्टोर पर जाना होगा और इसके लिए लाइका रिप्रेजेंटेटिव आपको के टच में रहेगा इस वीक में. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं. वन विनर पर हाउस होल्ड. याद रखें मिठाई प्री सेलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड. विजिट कीजिए अंबाला की साइट पर ambala.co.uk फॉर मैनी अदर स्पेशल ऑफर. इसके अलावा आपको डाइटरी इन्फॉर्मेशन भी चेक करने लिए हैं बिफोर कंज्यूमिंग द स्पेशल मिठाई फ्रॉम अंबाला स्वीट्स. फादर्स लिख, सिर्फ फादर आपको लिखना है. देखते हैं किस लकी फादर के पास ये मिठाई का डब्बा पहुँचता है इस आवर में. ये मत सोचिएगा कि अगला घंटा और उसके बाद वाला घंटे में आपका चांस नहीं आने वाला. बहुत मिठाई है भाई, बांटनी है और खिलानी है, आपका भी मुंह मीठा करना है. तो तैयार हो जाइए, फादर लिखकर भेजना है. अगला गाना मुकेश साहब की आवाज में, फिल्म का नाम कड़ी पतंग.
0: ऑन राग विद गोल्डन राग.

0: जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, कटी पतंग फिल्म का सुपर हिट ये गाना भी आपने सुना, और इसके बाद वो गाना सुनाएंगे जो आपको कल सुनाना रह गया था। हालांकि ये गाना गोल्डन राग के ऑप्शंस में भी शामिल था। थोड़ी देर में बताएंगे आपको इस घंटे मिठाई किसके घर पहुंचने वाली है, और उसके अलावा अगले घंटे आप बताएं और हम सुनाने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन बर्ड।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
0: तो भाई खुशी की बात यह है, सिंगर हरिहरन साहब वापस लौट रहे हैं यूके स्पेशल वन ऑफ इवेंट ऑन सैटरडे 4 जुलाई एट रॉयल फेस्टिवल हॉल। अपने टिकट पाने के लिए आपको विजिट करना है साउथ हॉल बैंक southbankcentral.co.uk पर, और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Yeah Yavo only on Like a Gold.

0: आशा दाई किशोरदा की आवाज में सीता और गीता फिल्म का ये खूबसूरत एनर्जी वाला गाना। और इससे पहले कि हम आपको आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड बताएं, हम बताते हैं अंबाला स्वीट वाला मिक्स मिठाई टिन किसके घर पहुंचने वाला है। और उन खुशनसीब हमारे लिसनर का नाम है इस घंटे के बॉबी जी। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी जी हमारे साथ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपके घर पहुंचेगा अंबाला स्वीट का ये मिठाई वाला बॉक्स। मुबारक हो।
1: You're a winner with Leica.

0: हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला घंटा दो दो कॉम्पिटिशन आपके लिए कर रहे हैं इंतजार, लेकिन फिलहाल आपको बताना है अगले घंटे आप बताएं और हम सुनाने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड जो कि है बड़ा ही अनयूजुअल और वो है पागल आवारा। याद रखिए पागल आवारा। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: ये है
2: लाइका गोल्ड।
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Mukesh saab ki awaaz mein Awara film ka ye khoobsurat sa gaana hum tak pahunchaya hai. Bahut sare logon ne Ullas ji, Meena Shah, Sandhya Bhavsar, भारती जी और संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए. एक बार फिर से फादर्स डे की आप सभी को शुभकामनाएं और एक बार फिर से रेडियो जाइए कंपटीशन के लिए.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: तो फादर्स डे के मौके पर हमने मिलाए हाथ अंबाला स्वीट के साथ आप सभी का मुंह मीठा कराने के लिए, जो दे रहे हैं गिव वे एक टिन बॉक्स मिक्स्ड मिठाई का एवरी आवर सारे हमारे स्टेशन पर. आपको करना क्या है, सिंपली अपना एक हमारे व्हाट्सएप पर फादर लिखकर भेजना है और साथ में अपना ईमेल एड्रेस. जिस लकी विजेता का नाम हम अनाउंस करेंगे उसे खुद जाकर अंबाला स्टोर से, जो कि उसके घर के पास में है, वहां से उसे अपना टिन बॉक्स मिक्स मिठाई का कलेक्ट करना है. लाइका के रिप्रेजेंटेटिव आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है. चेक योर डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन बिफोर कंज्यूमिंग मिठाई. विजिट अम्बाला .co.uk. मैनी अदर स्पेशल ऑफर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. तो देर किस बात की, फादर लिखिए और मिठाई का डब्बा हासिल कीजिए.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: Like a Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at likearadio.com. Like a
0: gold. Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
2: तो भाई आप भी अपने समर को और भी ज्यादा यादगार बनाइए साउथ हॉल ट्रेवल के साथ. एक्सप्लोर कीजिए बीच ब्रेक, सिटीस्केप्स और बहुत कुछ. इस हॉलीडे डील में आपको इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, होटल्स और अटोल प्रोटेक्शन भी मिलेगा. ट्रस्टेड है 40 साल से ज़्यादा का भरोसा और ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड के विजेता. विजिट कीजिए साउथ हॉल ट्रेवल और कॉल कीजिए, नंबर है 02085748410.
0: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: फिल्म शोला और शबनम फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, ये हम तक पहुंचाया गया है आज की थीम को ध्यान में रखते हुए पाकी चियांग जी रही हैं और निर्मला जी और सोमिला मुंगुर जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
3: दिस इज लाइक अ गोल्ड लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
1: लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का अपडेट आपके लिए लेकर हाजिर हैं। इस बार का टाइटल है साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स, होस्टेड बाय दीप राजा, ब्रेकिंग बैरियर्स इन अ मेल डोमिनेटेड फील्ड। लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
4: लाइक अ एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
5: It's the cinematic event of the year. Critics are saying a stunning, breathtaking triumph of savings. It's 2-for-1 cinema tickets from Compesa Market in cinemas all year.
6: That sounds like a great movie.
5: Sergey, it's no movie. It's 2-for-1 offer on cinema tickets.
6: Oh, yeah. I knew that.
5: Get 2-for-1 cinema tickets every Tuesday or Wednesday with the Compesa Market app. The simplest way to save.
7: When you take out a qualifying product to Compesa Market, one membership per year, participating cinemas, two standard tickets only, cheapest free. T's and C's apply.
8: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
9: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: विजिट TravelHubWorld.com।

0: जिंदगी वहाँ सेट्टो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: काजल्स कुटुर फॉर एवरी सेलिब्रेशन एवरी मोमेंट एंड एवरी अनफॉरगेटेबल एंट्रेंस
2: डिस्कवर काजल्स कुटुर साउथहॉल द ग्रैंड न्यू डेस्टिनेशन फॉर एलिगेंस एट 159 द ब्रॉडवे साउथहॉल UB1 1LR
1: एक्सप्लोर एक्सक्विजिट ब्राइडल वेयर ग्लैमरस पार्टी वेयर ब्यूटीफुल ज्वेलरी एक्सेसरीज एंड स्टाइलिश आउटफिट्स फॉर मेन एंड वुमेन
2: प्लस लाइक आवर लिसनर्स गेट 10% ऑफ ऑन ब्राइडल वेयर एंड पार्टी वेयर ओपन 7 डेज अ वीक
1: काजल्स कुटुर साउथहॉल वेयर every occasion finds its perfect style.
2: Visit kajalscouture.co.uk.
3: Welcome to the jungle.
4: Film? Bilkul fake.
3: Hamari film army wali.
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
4: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
3: और स्टार कास्ट है
4: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
6: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
4: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून.
7: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
8: किस लिए फिल्म में.
2: Great news, Tadikalal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tadikalal Raiders Lane, 287 Raiders Lane Pinner, HA5F5EJ. Quality, value and freshness only at Tadikalal Raiders Lane.
9: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज. कॉल करो 02037736333. मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
10: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
11: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
12: Southall Travel, Atoll Protected.
13: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu chhe ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment line avi rahya chhe Sakhna Rejo Husband ji. Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasya ni full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Video Rama athwa call karo Mr. B 07860280655.
1: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk. UK and celebrate Father's Day in Ambala style.
14: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Father's Day special is sponsored by Jamin Foods.
15: Jamin Puff Bites, जो है lemon chili, मस्त मसाला और Mexican salsa जैसे flavors में available.
16: Jamin Puff Bites, available at your nearest ethnic grocery stores.
17: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: किशोरदा की साथ लता जी की आवाज, अनहोनी फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना हम तक आया है भरत गंगाराम जी और महेंद्र पटेल जी की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगला कॉम्पिटिशन अगले 7 सेकंड्स के बाद।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
0: तो भाई ये कॉम्पिटिशन है जेज एंटरटेनमेंट का, और जो कि लाइका नेटवर्क परिवार के साथ में जुड़कर एक बेहतरीन शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसके उपलक्ष में आपको मिलेंगे 2 टिकट्स। और इस गुजराती स्टेज कॉमेडी शो का नाम है साखना रहे जो हस्बैंड जी, फीचरिंग लीना शाह एंड समीर शाह। और ये इवेंट हो रहा है 26 जून, फ्राइडे का दिन है, और वेन्यू है 27 पाटीदार समाज, वेम्बली, लंदन। आपको करना क्या है, हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर, जैसे कि अभी आपने अंबाला स्वीट वाला कॉम्पिटिशन खेला था, इसी के हिसाब से आपको हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर हस्बैंड लिखकर भेजना है। और एक लकी विजेता का नाम हम अनाउंस करेंगे, जिसे अपना टिकट कलेक्ट करना होगा वेन्यू से, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। साखना रहे जो हस्बैंड जी, आपको सिर्फ हस्बैंड लिखकर हम तक भेजना है। 2 टिकट आप मिस किसी एक लकी विजेता को, 2 टिकट हम लाइका परिवार की तरफ से देंगे, जैस इंटरटेनमेंट की तरफ से देंगे। और अगले गाने के बाद हम अनाउंस करेंगे अंबाला स्वीट वाले कॉम्पिटिशन में इस घंटे किसने मारी है बाजी।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए इंडियन करेंसी में 1 pound के बदले 125.08 पाकिस्तानी रुपीस, 368.79 श्रीलंकन रुपीस, 441.8 बांग्लादेशी टका, 162.72 अफगान अफगानी, 85.65 एंड $1
2: 1.32. Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at 101 pound and 5 pence per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. This is Leica Gold, non-stop classics.

0: मुकेश साहब की आवाज में। फिल्म का नाम है 24 घंटे और इस गाने को हम तक पहुंचाया है रानी जी और राजीव पटेल जी ने। अगला गाना किसकी फरमाइश के पिटारी से निकल कर आ रहा है, उनका हम नाम ले लेते हैं, अमिता प्रेम और साहिल जी। फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो, रफी साहब की आवाज में।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
0: और इसी के साथ आपको बता दें, अंबाला स्वीट वाले मिक्स मिठाई वाले जो टिन के विजेता हैं इस घंटे के, उनका नाम है दक्ष शर्मा। दक्ष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आप सभी के लिए। भाई अगला घंटा भी है, एक और मौका है आपके लिए लगाने के लिए चौका, और इसके साथ ही 3 गोल्डन राग के ऑप्शंस भी आपका कर रहे हैं इंतजार। सुनते रहें अगला गाना रफी साहब की आवाज में, लव इन टोक्यो।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM। किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
7: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
6: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
7: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
6: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services.

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल्डन राग संग सुपर संडे वाली इस महफिल में। मैं हूं आपके साथ अनुराग। बैक टू बैक गानों के साथ इस घंटे की भी होगी शुरुआत और उसके बाद हम आपको बताएंगे मिठाई डब्बा कहां पहुंचने वाला है और उसके बाद है आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शन।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. On Rug with Golden Rug.

0: और ये है लाइका नेटवर्क, बेमिसाल फिल्म का ये बेमिसाल सॉन्ग अभी आपने सुना। और अब वक्त आ गया है आपको आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस बताने का। जल्दी से कायदे प्लस कानून, तीन ऑप्शंस देंगे ए बी एंड सी जो होंगे गाने के, जिसे आपको वोट की तरह कास्ट करना है। और जिस गाने को लेकर सबसे ज्यादा वोट हमें रिसीव होंगे वो गाना बनेगा हमेशा की तरह आज का गोल्डन राग। सिंपल सा रूल है। ऑप्शन ए है आज के गोल्डन राग का, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, फिल्म का नाम है यादों की कसम। ऑप्शन बी है कौन है जो सपनों में आया, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान। और ऑप्शन सी है 100 बार जन्म लेंगे, फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, फिल्म का नाम है यादों की कसम। ऑप्शन बी कौन है जो सपनों में आया, फ्रॉम द फिल्म झुक गया आसमान। ऑप्शन सी 100 बार जन्म लेंगे, फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद। वोटिंग लाइन हो चुकी है ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहे।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
0: और भाई इसी के साथ बता देते हैं साखना रहे जो हस्बैंड जी वाले कंपटीशन में किसने मारी है बाजी। और ये बाजी मारी है शशि पटेल जी ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं शशि जी, आपको दो टिकट मिल रहे हैं और आप इस अमेजिंग शो का हिस्सा बनने के लिए हो जाइए तैयार। मुबारक हो।
2: You're a winner with Leica.
0: और इसी के साथ अम्बाला वाला कंपटीशन 20 घंटे है कर रहा आपका इंतजार। लेकिन ये मत भूलिएगा कि मेन मकसद आपको है अपने अपने वोट भी कास्ट करना। जैसे ही आएगा अम्बाला का कंपटीशन, उसके बाद उसकी एंट्रीज हो जाएंगी मान्य।
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 124 रुपीज एंड 5 पैसे। याद रखें अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: Leica Radio.
3: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: भाई टूनिशिया पर जापान ने एक जीत दर्ज की है, 0-4 का रहा है स्कोर, 0-4 का स्कोर रहा है। अगला मैच स्पेन और साउथ अरेबिया के बीच 5 बजे शुरू होगा।
3: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
5: ये है Leica Gold.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
9: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
10: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica. Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
9: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
11: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
10: Gorgeous Couture. For every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
9: Discover Gorgeous Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
10: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories, and stylish outfits for men and women.
9: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
10: Gorgeous Couture Southall, where every occasion find its perfect style.
9: Visit cardinalscouture.co.uk.
12: Search is changing.
13: Customers aren't just using Google anymore.
12: They're asking AI.
13: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
12: One business, one recommendation.
13: So when someone asks AI, who's the best company for this?
12: Will your business be the answer?
13: Or the one that got left behind?
12: The future of search has already started.
13: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
12: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
14: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल, battle protected.
10: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
15: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
17: Leica Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले Leica Gold और ऑनलाइन सुनो LeicaGold.com पे.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हरिहरन साहब की आवाज में साथ में हेमा सरदेसाई जी, हम साथ साथ हैं। फिल्म का ये नगमा सुनने थे। एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए है, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, फ्रॉम द फिल्म यादों की कसम। ऑप्शन बी है, कौन है जो सपनों में आया, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान। ऑप्शन सी है, 100 बार जन्म लेंगे, फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद। उस्तादी दिखाइए अपने, वोट कास्ट करते रहिए। बस अगले 7 सेकेंड्स में एक बार फिर से अंबाला स्वीट वाला कॉम्पिटिशन आपके लिए।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
0: तो जैसा कि हम आपको हर घंटे बता रहे हैं कि हमने मिला लिए हाथ अंबाला स्वीट के साथ, जो आपको दे रहा है गिव वे बॉक्स मिक्स मिठाई का। एवरी आवर हमारे सारे स्टेशन पर आपको सिंपली सेंड करना है वर्ड फादर हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप के नंबर पर, और विनर का नाम हम अनाउंस करेंगे शो के अंत में, इस आवर के आखिर में, बिफोर गोल्डन राग का के जीतने से पहले। आप उसके लिए पहले वोट करते रहें, उसके लिए बिल्कुल भी आप कंजूसी ना करें। कंपटीशन से मोह भंग हो रहा है, लेकिन जो हमारा इन हाउस कंपटीशन है उसे भी जारी रखें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, और कभी भी आप कोई भी मिठाई इस्तेमाल करें तो उससे पहले उसे चेक करें। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ambala.co.uk पर उपलब्ध होगी, सारे स्पेशल ऑफर, सारे स्पेशल कुजींस। तो कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है, अपने अपना पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दें, और याद रखें कि आपको वोट भी कास्ट करना है गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस में से एक।
1: ये है लाइक अ गोल्ड। आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई अपने वोडकास्ट करते रहे, अगले घंटे अगले गाने के बाद आने वाला है अम्बाला स्वीट वाले कॉम्पिटिशन के विजेता का नाम, और साथ ही साथ हम बात करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो इस वक्त लाइव मैच का सूरत हाल हमें बताएंगे, वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 का सूरत हाल थोड़ी देर में आपको लाइव हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कमल प्रभाकर जी की जुबानी।
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: This is the moment. Everyone's leaning in and... Someone just scored big on Tesco Marketplace. Watch high-definition headers with a smart TV. Go big with outdoor furniture to entertain your very own crowd and feed the whole team too, thanks to a brand new barbecue. Our sellers have all you need to make every match a moment. Find us online at tesco.com/marketplace. Tesco, every little helps. Terms and conditions apply.
4: Like a gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।

0: नीले पर्वतों की धारा आदमी और इंसान फिल्म का ये गाना सुन रहे थे और इसी के साथ आपको बता देता हूँ कि बंद हो चुकी है आज के लिए आज की वोटिंग लाइन, चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। लेकिन उससे पहले बताएंगे आपको अंबाला स्वीट वाले कॉम्पिटिशन के विजेता का नाम।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ,
0: और इस बार मिठाई का ये बॉक्स पहुंच रहा है मनोहर नेहरा जी के पास। मनोहर जी, आपका दिन मनोहर रहे। मनोहर नेहरा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप सभी सुनिए आज का गोल्डन राग, जिसे दिया है आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट। देखते हैं क्या है सरप्राइज आपके लिए।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए £1 के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 124 rupees and 90 paise, पाकिस्तानी रुपीज 368.11, श्रीलंकन रुपीज 441.66, बांग्लादेशी टका 162.54, अफगान अफगानी 85.51 एंड 1 US डॉलर 1.32।

0: अशरद भोपाली साहब के लिखे हुए ये गीत और रवि साहब का दिया हुआ संगीत। फिल्म का नाम उस्तादों के उस्ताद, और वाकई में आप लोग उस्ताद, जिस कारण मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आपने चुना है बेहतरीन सॉन्ग आउट ऑफ 3 ऑप्शंस। चलिए ठीक है, जल्दी से नाम लेते हैं किसने किसने इस गाने को दिए हैं सबसे ज़्यादा वोट्स। अयूब चौहान जी, के भामरा जी, सईद इकबाल, मनोहर नेहरा जी, मिसेज इकबाल बेगम, उल्ला जी, संध्या भावसर, अमिता जी, महेंद्र पटेल, अमर जी, संतोष जी, अर्जुन साहब, हंसा वोरा जी, सालिम अख्तर, सुमित चौरसिया, कमलेश, पंकज वर्मा एंड प्रीतम। आप सभी ने इस गाने को दिए सबसे ज्यादा वोट, और सेकंड हाईएस्ट वोट मिले थे बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं यादों की कसम फिल्म से, लेकिन गाना तो हमें एक ही चुनना है। नेक्स्ट आ रही है सरिता जी, अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात, तब तक बहुत ख्याल रखें, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, टेक केयर, बाय बाय।
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
2: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira Twin Center Escape. Fly from the UK, enjoy 3-night stays with breakfasts, connect

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और उम्मीद करती हूँ इन दोनों गीतों को आपने पसंद भी किया। आज वर्ल्ड्स म्यूजिक डे है और इस डे पर मैंने सोचा गीतों की बात ही क्यों ना हो, गीत वर्ड को मैंने चुन लिया और दो गीत आप तक पहुंचा दिए और बाकी के गीत भी मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। जो पहले दो गीत मैंने शामिल किए वो किन फिल्मों से थे बता देती हूँ। ये पहला वाला गीत यस बॉस फिल्म से था, 1997 की फिल्म, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। और दूसरा गीत अनुराधा पौडवाल एंड सुरेश वाडकर की आवाज़ में और ये गीत मैंने चुना था शेषनाग से। म्यूज़िक क्या है आपके लिए, क्या मायने रखता है मुझे बताएंगे आप तो मुझे अच्छा लगेगा। म्यूज़िक फॉर मी इज़ अ डेली कंपेनियन, माय प्रोफेशन एंड माय पैशन एज वेल। एज अ रेडियो प्रेजेंटर आई डोंट जस्ट प्ले म्यूज़िक, मैं हमेशा ये कहती हूँ मैं ऐसे ही कोई म्यूज़िक नहीं प्ले करती हूँ। आई गेट टू शेयर मोमेंट्स, मेमोरीज एंड इमोशंस इन एवरी सॉन्ग। एंड मैं हमेशा आपसे पूछती रहती हूँ कौन सी याद आपकी जुड़ी है गीतों के साथ। संगीत की कोई भाषा तो नहीं होती है, संगीत संगीत ही है। जिस भी कंट्री में चले जाएं वहाँ का संगीत उनके लिए बहुत मायने रखता है, हमारे लिए हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक बहुत मायने रखता है। किसी के लिए लैटिन बहुत अच्छा है, किसी के लिए पॉप अच्छा है, किसी के लिए रॉक अच्छा है। सो म्यूज़िक म्यूज़िक है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है। पर अक्सर मैं ये कहती हूँ कि प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है। ये सुर क्या मिला देता है, भगवान मिला देता है, बहुत सारी बातें हैं, शेयर करती रहूँगी लेकिन साथ ही साथ आपको गीत भी सुनवाती रहूँगी। अरे भाई गीतों के बारे में बातें इतनी सारी कर ली सरिता, हाल चाल नहीं पूछा और अपने ना आने की वजह भी नहीं बताई। कल की भाई छुट्टी कर ली थी सरिता ने, छुट्टी इसलिए की थी कि एक चैरिटी फंक्शन में जाना था, क्राई एंड चिल्ड्रंस चैरिटी है और उनके प्रोग्राम में जाना था डिनर पे। वहाँ गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों से मुलाकात भी हुई एंड चैरिटी के बारे में भी जानने की हमें मौका मिल गया, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई थी। एनीवे अब उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं नहीं आ सकी, दो काम एक साथ नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरी जगह शीना इस हॉट सीट पर थी और शीना का भी आपने भरपूर साथ निभाया और उन्हें पसंद भी किया। और अब सरिता है यहाँ पर पूछने लगी है आपसे कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ बाय एनी चांस इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन चेयर अप, लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते गुनगुनाते चहकते महकते और थिरकते हुए ये गीत चुन चुन कर लाई है सरिता सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और उन सभी का थैंक्स कर दूंगी जिन्हें मैंने अभी कहा नहीं कि आप मुझे मैसेजेस भेजिए और पहले से उन्होंने मुझे एहसास दिला दिया कि वो मेरे साथ साथ हैं, मेरे आस पास हैं। थैंक यू एवर सो मच।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, we your £1 in British sterling can get you up to 124 rupees and 5 paisas today. And send money to India via SBI Yono app या branch में जाकर June के end से पहले पहले अगर आप जाएंगे तो you can be into win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: We hit Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: राइट भाई, आप सभी जानते हैं कि आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 26 चल रहा है और मैच हो रहे हैं WINW 99 वेस्ट इंडीज वीमेन 1/5 विकेट्स एंड आज एक और मैच हुआ और जिसमें इंडियन वीमेन चूज टू बैट फर्स्ट. इंडियन वीमेन दे आर प्लेइंग विद साउथ अफ्रीका. 258 फॉर 7 रन्स बनाए हैं और अब साउथ अफ्रीका कितने बनाते हैं उसके लिए आपको इंतजार करना होगा. हम आपको अपडेट देते रहेंगे.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Gold. Leica
0: Gold. So, ये तो सरिता ने आपको बता दिया कि गीतों की आज लड़ी पिरोई जा रही है और गीत वर्ड हर गीत में आ रहा है, हर गाने में सुनाया जा रहा है. सो आपको कौन सा ऐसा गीत याद आ रहा है? आप सोचते हैं कि सरिता की प्लेलिस्ट पर भी होगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ शामिल कर लें, तो मुझे बता सकते हैं. नंबर आपका जाना पहचाना. यू कैन नाउ ऑलवेज व्हाट्सएप मी.
4: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रहया छे सखणा रेजो हस्बैंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी. फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655. सखणा रेजो हस्बैंड जी.
5: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1-1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit kajalscouture.co.uk.
7: Welcome to the jungle.
8: Film बिल्कुल fake.
7: हमारी film army वाली.
9: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
8: Danger एकदम real और survival skills zero.
7: और star cast है
8: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
10: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
8: Welcome to the jungle in cinemas 26 June.
11: अरे तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं.
12: मैं किस लिए फिल्म में?
13: Packed for the trip? Gifts? Passport?
14: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
13: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
14: Simzy?
13: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
15: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
16: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर. हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल. अपने टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk. India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
15: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
16: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
17: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5 कोर्स लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की? बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
18: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala. Bala style.
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
19: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply. sonatours.co.uk 13 days Vietnam and Cambodia. Departures every month September to December. First 10 bookings get 100 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
20: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
21: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Usha Khanna ka compose kiya, Sawan Kumar Tak ka likha geet, bahut meaningful gana aur mujhe hamesha bahut pasand aaya. Ummeed karti hu ki aapne bhi is geet ko zarur enjoy kiya. And bahut se saathi likh rahe hain, maine pucha tha ki what is music to you, iski क्या मायने हैं. तो प्रतुला जी नॉर्मली मुझे मैसेज नहीं लिखती हैं, लिखा है कि नमस्कार सरिता जी, म्यूज़िक इज़ माय लाइफ, आई ब्रीथ एंड आई लिव म्यूज़िक. क्या बात है. और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भी की है गाने की, मुझे अब उनका नाम ढूंढना पड़ेगा क्या था. हाँ मिल गया. ज्योति जसपाल कौर लिखती हैं, मेरे मितवा मेरे मित्रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीतरे, दैट्स कमिंग अप नेक्स्ट. लेकिन एक गानी दो गीतों में से एक गीत मुझे चुनना है और मैं सोच रही हूँ कौन सा गीत शामिल करूँ, किस गीत को मैं प्लेलिस्ट से हटा दूँ. दो गीत हैं, इंतकाम का गीत तेरे साज का और दूसरा गीत है गीत मेरे होंठों को दे गया कोई, कभी अजनबी थे. इन दोनों गीतों में से कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है, जल्दी से मुझे मैसेज करके बता सकते हैं. मीनवाइल और भी कुछ काम है ना, तो वो काम कर लेते हैं. राइट अभी ये तो मैं आज अभी तक भूल गई कहना कि आज फादर्स डे भी है. सभी फादर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक हो. इफ़ यू आर ए फादर, या आप अपने फादर को विश कर रहे हैं या आपके बच्चे आपको विश कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे आपका प्यार हमेशा इसी तरह से बना रहे और आपका जो आशीर्वाद है बच्चों के साथ इसी तरह से हमेशा रहे. राइट, फादर्स डे ही से ही रिलेटेड एक जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. द फादर्स डे लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद द अंबाला स्वीट टू गिव अवे अ टिन बॉक्स ऑफ मिक्स्ड मिठाई एवरी आवर अक्रॉस ऑल अवर स्टेशंस. सिंपली सेंड इन द वर्ड फादर. ओके, सिंपली सेंड इन द वर्ड फादर इन द स्टूडियो. व्हाट्सएप नंबर आपको आपका जाना पहचाना है एंड यू कुड विन विद अंबाला. विनर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पिक अप देयर बॉक्स ऑफ मिठाई फ्रॉम देयर नियरेस्ट अंबाला स्टोर एंड अ लाइका रिप्रेजेंटेटिव विल बी इन टच विद यू लेटर this week. Terms and conditions apply. One winner per household. Yeah, don't be greedy. The box of mithai is pre-selected and cannot be changed, and checked dietary informations before consuming. Visit ambala.co.uk for many other specials as well. So, jaldi se mujhe WhatsApp karke bhej dijiye na. Likhenge kya? Just father. फादर लिखिएगा और भेज दीजिएगा अपनी एंट्री.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: भाई सरिता ऐसे ही नहीं कहती है कि म्यूजिक इज माय डेली कंपेनियन, माय प्रोफेशन एंड माय पैशन. एज ए रेडियो प्रेजेंटर आई डोंट जस्ट प्ले म्यूजिक, आई गेट टू शेयर मोमेंट्स, मेमोरीज एंड इमोशंस विद एवरी सॉन्ग. सो आपकी कोई इमोशन जुड़ी हो, कोई याद जुड़ी हो तो बता सकते हैं. आई विटनेस्ड हाउ अ सिंगल सॉन्ग कैन ब्राइटन अ डे एंड आपकी मेमोरीज को स्पार्क कर देता है और बीइंग पीपल टुगेदर जो आपके साथ हैं उनकी याद दिलाता है. दैट्स द मैजिक ऑफ म्यूजिक एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस खूबसूरत सफर विद यू.
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: क्या हुआ इसको, क्यों नहीं चलता है? चलिए कोई बात नहीं, हम प्ले कर देते हैं. कंपटीशन के चक्कर में मेरे साथियों ने इस बात का जवाब कम दिया है कि कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, लेकिन फादर फादर फादर फादर इतनी बरसात हो रही है मैं बता नहीं सकती स्टूडियो में. चलिए कोई बात नहीं, मैंने अपनी पसंद का गीत सुना दिया, दूसरा गीत देखेंगे नेक्स्ट आवर में.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म दिल एंड दूसरा गीत था लाल दुपट्टा मलमल का. एक चीज़ कॉमन रही दोनों गीतों में आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल एंड उदित नारायण की. एक 1990 की फिल्म थी और एक 1989 की फिल्म. राइट भी दिल का गीत मैंने इसलिए आप तक पहुँचाया आज क्योंकि ये फिल्म आज नहीं बल्कि कल 22nd ऑफ जून को रिलीज़ हुई थी. आनंद मिलन का संगीत था, समीर ने लिखे थे गीत एंड इंद्र कुमार जी ने बनाई थी ये फिल्म. माधुरी दीक्षित, आमिर खान, अनुपम खेर एंड साईद जाफरी सभी की बहुत अच्छी भूमिकाएं थी. लेकिन आज के दिन जो फिल्में रिलीज़ हुई उनमें से किसी के भी गीत इतने पॉपुलर नहीं हुए थे इसलिए मैंने शामिल नहीं किए. कौन अपना कौन फराया, वहीदा रहमान एंड जॉनी वॉकर ने इस फिल्म में काम किया था. 1963 की फिल्म थी. ज़बरदस्त वॉज रिलीज टुडे एज वेल इन 1985. आर डी बर्मन का संगीत, नासिर हुसैन साहब ने बनाई थी ये फिल्म. एंड इज्जत वॉज अनदर फिल्म 21st of June 1991 में ये रिलीज़ हुई थी. जैकी श्रॉफ और संगीता बिजलानी ने इस फिल्म में काम किया था. अनु मलिक का था संगीत. प्रेम कैदी वॉज ऑल्सो रिलीज टुडे 21 जून 1991 में. करिश इसमें थे हरीश एंड करिश्मा कपूर. के राव ने बनाई थी ये फिल्म और आनंद मिलन का था संगीत. लेकिन इनमें से किसी का संगीत मैं शामिल आज के प्रोग्राम में नहीं कर पाई. इंस्टेड कल जो फिल्म रिलीज़ हुई उनमें एक फिल्म है दिल और कल ही के दिल 1990 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 22nd ऑफ जून को. एंड घायल वॉज ऑल्सो रिलीज ऑन 22nd of June 1990 जिसका गीत मैं नेक्स्ट आवर में ज़रूर शामिल करूँगी. हैप्पी Father's Day to all the fathers who are celebrating with their children today. और किसी के बच्चे दूर भी हैं तो वहाँ से भी मैसेजेस मिल रहे होंगे उन्हें ज़रूर. एंड जिस तरह से भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लंच के लिए जा रहे गए थे या फिर डिनर के लिए तैयारी हो रही है तो खूब इंजॉय कीजिएगा. आपका प्यार इसी तरह से बना रहे, माँ बाप के साथ बॉन्ड रहे बच्चों का, ये सबसे बड़ी बात होती है.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भई अगर आज आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तो 1 British sterling pound can get you 124 rupees and 5 paisas. And you can send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Also a 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Bhai aaj Ecuador and Curacao mein match hua tha and uske baad group F ka match tha Tunisia and Japan mein and Japan won the match 4-0 se and Spain and Saudi Arabia ke beech match hua and Spain won with 1-1. ग्रुप डी का मैच है बेल्जियम एंड ईरान के बीच, शाम 8 बजे शुरू होगा और आज 11 बजे है यूरुग्वाई एंड कैबो वर्डे के बीच में मैच जो कि रात को 11 बजे शुरू होगा.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Drive into summer with Mercedes-Benz. Discover our latest offers across the range, like the A200 AMG Line Executive Hatchback, now available from £289 a month with a £6,000 saving. Plus, enjoy your first two services for free. Visit your local showroom today. PCH offers 30th of June, 4-year lease, advance rental £7,061, subject to status and availability. T's and C's apply. Mercedes-Benz Finance, cash and finance customers.
1: This is Sarita Sabharwal on Leica Gold.
5: Leica Gold.
6: Hi, hello, okay. Show much you get the way and ash you take off. Public demand. Hariti Avi Rachu, London Maru, now, Natak Lai. મહિને પત્ની પ્રીમિયર લીગ એટલે કે PPL યસ ફ્રોમ 3rd જુલાઈ ટિલ 12th ઓફ જુલાઈ વાઓ એન્ડ ધીસ ઇઝ બીંગ પ્રેઝન્ટેડ બાય પંકજ સોડા ગેલેક્સી શોઝ યાદ રાખજો
2: પત્ની પ્રીમિયર લીગ શોઝ એટ રાઇસલી અલ્બર્ટન ઈસ્ટ એન્ડ સાઉથ લંડન લોર હોમ લેસ્ટર ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન કોલ દીપા ઓન 0794756194
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
9: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
10: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
9: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
10: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
9: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
10: Visit Kajal's Couture .co.uk
11: Welcome to the jungle.
12: Film बिल्कुल fake.
11: हमारी film army वाली.
13: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
12: Danger एकदम real और survival skills zero.
11: और star cast है.
12: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
14: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने gun पकड़ा था क्या?
12: Welcome to the jungle in cinemas 26 June.
15: अरे तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
16: मैं किस लिए फिल्म में?
17: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
18: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
17: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
18: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
17: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
18: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
17: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
19: Location, location, location.
20: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
19: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
20: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
19: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
20: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
19: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
20: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
19: high appreciation
20: in Dubai.
21: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
22: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
23: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
24: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
25: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
26: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: चॉक चॉक चॉक चॉक। ओ डैडी कूल कूल कूल, मेरा बेटा फूल फूल फूल, मेरा बेटा फूल फूल फूल।
1: भाई आप सोचते हैं डैडी और सन में ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए, इसी तरह से कूल कूल कूल वाला होना चाहिए। किस किस का ऐसा रिश्ता है वेरी कूल वाला, तो मुझे बता सकते हैं। और आज फादर्स डे पर हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। फादर्स डे ये गाना स्पेशली मैंने डेडिकेट कर दिया सभी फादर्स को। फादर्स जो ज़िंदगी भर हमारे लिए साइलेंटली एज ए वॉरियर काम करते हैं, हमारे पापा कहते हैं ना, माँ प्यार बोल कर जताती है और पापा प्यार करके दिखाते हैं। ऐसा ही है आपके जीवन में भी, तो ज़रूर बताइएगा। उनकी डांट भी हमें प्यार प्यारी लगती है, और बस वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है ना उनके उनके जो डांट होती है उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है, और उनकी थकान कभी उनके चेहरे पर नहीं आती है, सिर्फ उनके सपने में दिखती है। और वो सपने किसके होते हैं, हमारे सपने देखते हैं, हमारे माँ बाप दोनों देखते हैं लेकिन फादर ज़्यादा। आज फादर्स डे पर एक बहुत ही प्यारा सा फैक्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि दुनिया का पहला फादर्स डे 1910 में अमेरिका के स्पोकन शहर में मनाया गया था, और इस दिन का आइडिया एक बेटी सुनारा स्मार्ट डॉड ने दिया था, और अपने सिंगल फादर के सम्मान में बहुत ही उन्होंने ये उनको ट्रिब्यूट दी थी या उनको सराहा था कि मेरे पापा इज द ग्रेट। एंड दैट सॉन्ग इज कमिंग नेक्स्ट थोड़ी देर में। एक और बात है कि रिसर्च कहती है पापा के साथ मजबूत रिश्ता रखने वाले बच्चे ज़िंदगी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। सो अपने पापा के साथ बॉन्ड बनाए जाएं, बनाए रखिएगा हमेशा अपना रिश्ता उनके साथ, बहुत अच्छा रखिएगा। शायद इसीलिए पापा हम सब के लिए एक इनविजिबल शील्ड की तरह होते हैं। तो प्यार मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने पापा को भी जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन सभी पापास को जो अपने बच्चों की दिलो जान से एक बैकबोन की तरह खड़े रहते हैं उनकी ज़िंदगी में। सो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल माई जितने भी इस वक्त हमारे पापा सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: और भी अब आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, और कॉम्पिटिशन में मैंने आपसे लास्ट आवर में भी कहा था कि आपको फादर लिखकर भेजना है। सो दिस फादर्स डे लाइक अ रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद अम्बाला स्वीट टू गिव अवे अ टिन बॉक्स ऑफ मिक्स्ड मिठाई एवरी आवर अक्रॉस ऑल आवर स्टेशन, एंड सिंपली सेंड इन द वर्ल्ड फादर टू द स्टूडियो व्हाट्सएप एंड यू कुड विन with Ambala later on this week. And TNC supplies one winner per household. The box of Mithai is pre-selected and cannot be changed. So check your dietary informations before consuming, and visit ambala.co.uk for many other special offers. So last hour ke jo winner hai unka naam bhi main announce karungi, aur is hour ke jo winner hai unka naam next hour mein अनाउंस कर दिया जाएगा। सो आप इसी तरह से बने रहें, और आप जानते हैं ना कि मैच चल रहा है, और किसका मैच चल रहा है आजकल, आईसीसी का T20 का विमेंस मैच चल रहे हैं, और हमें हमारे कमल प्रभाकर जी अपडेट देते हैं। सो मैं ट्राई करती हूँ कि कमल प्रभाकर जी मुझसे बात कर सकें, तो आइए इनका ज़रा नंबर मिला दें, देखें कि कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। कम ऑन कमल प्रभाकर जी, हेलो कमल जी, हेलो कमल जी, आप मेरे साथ हैं? हेलो कमल जी,
4: आओ।
1: यस यस, मैंने कहा शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। सो वेरी क्लियर पहुंच रही है। ओके, तो आज के मैच के बारे में हमें बताइए कि क्या चल रहा है।
4: वेल सरिता जी, सुबह तो एक बहुत अच्छा मैच हुआ था। श्रीलंका 98 ओनली स्कोर्ड इन 19.4 ओवर्स में, और वेस्ट इंडीज जैसे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज इजी जीत जाएंगे, बट इतना डिफिकल्ट कर दिया वो लोग ने। श्रीलंका बॉल्ड वेल, फील्डेड वेल, रिस्ट्रिक्टेड वेस्ट इंडीज 99 for 5 16 ओवर्स में। वेरी टाइट
1: जी जी,
4: और उससे बड़ा बड़ा मैच चल रहा है।
2: बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइक अ गर्ल,
4: गेम इज इवन हॉटर नाउ। इंडिया वर रिस्ट्रिक्टेड टू 158 फॉर 7 इन 20 ओवर्स।
1: जी जी,
4: और साउथ अफ्रीका, यू नो दे आर अ ग्रेट टीम एज वेल, 122 फॉर 2, और दे नीड ओनली 37 रन्स इन 24 बॉल्स। So it is going to be touch and go, but the finish is going to be fantastic.
1: Wow,
4: it's going to be
1: wow.
4: great game.
1: Yes, I can see on my screen as well. 16 overs ho chuke hain South Africa ke, and 37 runs they need in 24 balls. So let's see ki kya hota hai final. रिजल्ट क्या निकलता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच,
4: थैंक
1: यू, बाय। ये थे हमारे कमल प्रभाकर जी।
2: To you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
5: Like a gold,
2: Sarita Sabharwal, the biggest classics on Like a Gold.

भाई इसकी ईद की फरमाइश मुझ तक पहुंची थी, अब मुझे इतने सारे मैसेजेस में वो मैसेज नहीं मिल रहा है जिन्होंने इसकी ईद की रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचाई थी। राइट, और राजू पंचाल जी आपका मैसेज मिला, आपने लिखा है कि आई वॉन्ट टू विश माई

0: आपके स्पेशल बर्थडे पर आपको स्पेशल बधाई पहुंच रही है और हमारी तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई जयदेव वी सोनी जी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, एक पाउंड के बदले आज आपको मिल सकते हैं 125 रुपीस and 10 पैसा in Indian rupees, पाकिस्तानी रुपीस 368.23, in Sri Lankan rupees 441.80, बांग्लादेशी टका 162.61, अफगानी 85.59 and US dollars 1.32.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKER Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold ka rate hai market mein 101 pounds and 5 pence per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: Aur bhi jaldi se main announce karne ja rahi hoon.
2: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: और वही हमारे अंबाला स्वीट्स के दो विनर्स का नाम मैं अनाउंस करने जा रही हूँ। लास्ट आवर के विनर हैं शिबानी दास एंड आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, हमारी टीम इन्फॉर्म करेगी या अम्बाला के स्टाफ से की तरफ से। एंड ओम प्रकाश लाल जी आप हैं इस आवर के हमारे विनर, दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। वन विनर पर हाउस होल्ड है, तो अगर आप जीत चुके हैं तो प्लीज़ आप दोबारा से नेक्स्ट आवर में नहीं फादर लिख कर भेजिएगा। एंड आपको जो नियरेस्ट अम्बाला है वहाँ से जाकर अपने बॉक्स कलेक्ट करना होगा। अ लाइका रिप्रेजेंटेटिव विल बी इन टच विद यू दिस वीक।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल, auto protected.
4: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
5: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: It's India versus Pakistan. And this is India's lineup.
7: This June, the FIH Hockey Pro League brings one of sport's greatest rivalries to London.
8: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre.
7: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
8: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
6: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
9: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
10: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
11: विजिट मंत्रा holidays.

0: अभी बैक टू बैक दो गाने आपने सुने, एक वेरी पेपी एंड इसका मिजाज थोड़ा ठंडा था एंड स्लो गाना था लेकिन बहुत मीठा गाना था। रफ़ी साहब का साथ किस फीमेल आर्टिस्ट ने दिया, क्या आप जानते हैं उनकी आवाज़ को, पहचानते हैं? अगर हाँ तो मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। फिल्म रास से चुना था इस गीत को एंड ये फिल्म आज के दिन रिलीज़ नहीं हुई थी, वैसे ही बता रही हूँ कि 5th May 1967 में आई थी ये फिल्म। और फिल्म रविंद्र दवे जी ने डायरेक्ट की थी एंड प्रोड्यूस बाय जी पी सिप्पी एंड सिप्पी फिल्म्स। द स्टोरी वाज रिटन बाय सी जे पवरी एंड फिल्म स्टार्ड राजेश खन्ना एंड बबीता, आईएस जोहर एंड कमल कपूर और भी असित सेन वगैरह भी थे। एंड इस फिल्म का संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, लेकिन दिस सॉन्ग इज़ ऑल्सो स्लो लेकिन बहुत मीठा सा गीत है। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी पसंद को पसंद किया। दिल संभाले संभलता नहीं, वो भी मैं काफ़ी दफ़ा प्ले करती हूँ गाना। एंड दूसरा अकेले हैं चले आओ कहाँ हो, अकेले हैं कहाँ चले आओ कहाँ हो तुम, वो गाना भी काफ़ी मशहूर हुआ था। कहा जाता है कि दिस वॉज मेंट टू बी द डेब्यू फिल्म फॉर बोथ राजेश खन्ना एंड बबीता, बट ड्यू टू डिलेज दिस फिल्म वॉज रिलीज a year after their debut and in other films and then Rajesh Khanna's performance in this film was very appreciated, critically appreciated. And Ghayal maine last hour mein bhi bataya ki ye film कल यानी 22nd ऑफ जून को रिलीज़ हुई थी 1990। विजेता फिल्म्स की ये फिल्म थी एंड डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी। स्क्रीन प्ले भी उन्हीं ने लिखा था। इस फिल्म में धर्मेंद्र प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र जी ने। सनी देओल, मीनाक्षी सिसोदिया, अमरीश पुरी, ओम पुरी, कुलभूषण खरवंदा, शफी मांदा, मौसमी चटर्जी, बहुत सारे एक्टर्स थे। हाउ कैन आई फॉरगेट इन स्पेशल अपेयरेंस राज बब्बर भी थे एंड सुदेश पैरी as well। फिल्म का संगीत बप्पी लहरी साहब का था और ये गाना तो काफ़ी मशहूर हुआ, तो अब वर्ल्ड म्यूज़िक डे पर यस लंबाडा ट्यून हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गई और उम्मीद करती हूँ इस गीत को आपने इंजॉय भी किया। और अब ज़रा प्रोग्राम को आगे बढ़ा दें और ये जान लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 124 rupees and 5 paisa. Send money to India via SBI Yono or by branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000 and also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
3: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Right, bhai, football matches chal rahe hain, aap sabhi jante hain achhi tarah se, aur main aapko jaldi se bata dun ki aaj sham ko match, well, ek match ho chuka hai Spain and Saudi Arabia ke beech mein, 4-0 se Spain win kiya hai and group G ka Belgium and Iran ke beech match होने वाला है आज शाम 8 बजे एंड यूरुग्वे एंड केबो वर्डे में मैच होगा रात को 11 बजे।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Welcome to the Money Supermarket Training Academy, where we put our new recruits through their paces, training them to be their very best at saving the nation money, turning them into deal-finding hotshots, and teaching them how to come up with fantastic rewards for our customers.
5: Is this
4: the Money Supermarket Training Academy? Absolutely. Come in!
6: Money Supermarket, where better off begins. Download the app today. Rewards include prepaid MasterCard, qualifying purchase with logged-in account, 18 plus UK only. See site for T's and C's.
1: Sarita Sabharwal with your

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
4: इस जून FIH Hockey Pro League लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. India versus Pakistan, live at Lee Valley Hockey and Tennis Center. High speed action, high intensity moments, बिल्कुल unmissable. अपने टिकट्स अभी बुक करें at englandhockey.co.uk.
5: Swipe in the scoring, he does.
4: India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
3: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
4: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
6: In Dubai.
7: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che. Ek dhamakedar international Gujarati comedy. Jai's Entertainment. Laine avi rahya che. Sakhna rejo husband ji. Leena Shah ane Samir Shah saathe. Hasyani full guarantee. Fridays 26 June. 27 Patidar Samaj. Wembley Park ma. Ratna 8 vage. Tickets booking mate. Visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Videorama. अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655.
4: कम टुगेदर फॉर अ मीनिंगफुल कॉज. श्री कच्छ सत्संग स्वामीनारायण टेम्पल कैंटन हैरो एंड सेंट ल्यूक्स हॉस्पिस हैरो प्राउडली प्रेजेंट द एनुअल स्टारलाइट वॉक सैटरडे 27 जून फ्रॉम बायरन हॉल स्टार्टिंग एट 7:30 PM. तारों के नीचे साथ वॉक करिए और लोकल कम्युनिटी में एंड ऑफ लाइफ केयर के लिए सपोर्ट दीजिए. रजिस्टर टुडे एंड रिसीव अ स्पेशल डिस्काउंट यूजिंग कोड लाइक आर 10. डिटेल्स के लिए विजिट करें skssd.org और फॉलो सेंट ल्यूक्स हॉस्पिस ऑन सोशल मीडिया. रेडियो पार्टनर्स लाइक आवर रेडियो.
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 at all protected.
11: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chicky Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
12: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
11: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
13: Sonatours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sonatours. Call 0208-951-0111.
14: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGoon.com.
15: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक में हरिहरन जी की आवाज़ शामिल हुई और ये गीत मैं फादर्स डे के मौके पर भी सभी अपने लिसनर्स के नाम करती हूँ जो फादर्स डे मना रहे हैं। पिता, पापा, डैड, जो भी कहिए, आपके प्यार दर्शन, प्यार से, मार्गदर्शन से और त्याग के लिए दिल से हम धन्यवाद करते हैं और आप हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा होते हैं। पिता, यस, एंड इनके संस्कार, आपकी, इनकी जो सीख होती है, आपका प्यार सबसे बड़ी हमारी पूंजी बन जाती है। ईश्वर हमेशा आपको स्वस्थ रखें, ये दुआ, ये प्रार्थना सभी की तरफ से मैं उनके फादर्स के लिए करती हूँ, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए। हर मुश्किल राह को आसान बनाने वाले होते हैं पिता, हर सपने को हौसला देने वाले होते हैं पिता, और सबसे बड़े सहारा और सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं पिता। वो छाया है जो धूप में भी सुकून देती है, वो शक्ति है जो चुनौती से लड़ना सिखाती है। पिता का प्यार अनमोल होता है और उनका साथ सबसे खास होता है। उनके आशीर्वाद से जीवन समर जाता है और ऐसे पिता को हमारा शत शत प्रणाम है। आप सभी की तरफ से मैंने आपके फादर्स को हैप्पी फादर्स डे कह दिया और कहना भी चाहूँगी। और इस फादर्स डे के शुभ अवसर पर लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद अंबाला स्वीट्स टू गिव अवे अ टिन बॉक्स ऑफ मिक्स्ड मिठाई एवरी आवर अक्रॉस ऑल ऑफ अवर स्टेशंस। सो सिंपली सेंड इन द वर्ड फादर। जिन्होंने लास्ट आवर, टू आवर्स में हिस्सा लिया, प्लीज़ आप मत एंटर कीजिएगा कंपटीशन। और जिन्होंने नहीं दी अभी तक मैसेजेस भेजे हैं तो जल्दी से भेज दीजिएगा। सिंपली सेंड इन द वर्ड फादर टू द स्टूडियो व्हाट्सएप एंड यू कुड विन विद अंबाला। विनर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पिक अप देयर बॉक्स ऑफ मिठाई फ्रॉम द नियरेस्ट अंबाला स्टोर। A Leica representative will be in touch with you later this week, not today, later this week. And terms and conditions apply. One winner per household. अगर आपने किसी और प्रोग्राम में भी जीत लिया है, आपका नाम अनाउंस हो गया और आपने फिर से दोबारा उसी एड्रेस पर और उसी नाम पर दोबारा से अप्लाई किया है या व्हाट्सएप भेजा है, तो आपके विन भी अगर गलती से हो गया तो आपको नहीं मिलेगा। एंड check your dietary information before consuming the product. Visit ambala.co.uk for many other specials.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: सुमन कल्याणपुर की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही दिनों के ये गीत प्ले नहीं हुआ तो क्यों ना आज प्ले कर दें। तुम अगर आ सको तो आ जाओ, फिर ना कहना कि हमें बुलाया नहीं।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: लाइका गोल्ड।
3: जी हाँ, लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए लाइका गोल्ड सुन रहे हैं या लाइका रेडियो, जहाँ भी, मैनचेस्टर में, मिडलैंड्स में, जहाँ भी सुन रहे हैं, आप सबका स्वागत है। और आपको एक खबर देनी है, और वो ये कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल्स, एक्सप्लोर बीच ब्रेक, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 years एंड विनर्स ऑफ ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। विजिट साउथ हॉल ट्रेवल और कॉल ऑन 0208-574-8410।
4: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। टेक योर टेस्ट बड्स टू द नेक्स्ट लेवल विद टिल्डा।
5: आपके भीगे हुए जिस्म से आ जाती है

0: भीगी रात से चुना था इस गीत को। एक बार फिर से सुमन कल्याण भुजी की आवाज शामिल थी और साथ दे रहे थे मोहम्मद रफी साहब।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: राइट करेंसी रेट आपको जल्दी से बता दें, एक पाउंड के बदले आज इस वक्त आपको मिल सकते हैं कितने पैसे, 125 रुपीज़ एंड 1 पैसा, पाकिस्तानी रुपीज़ 368.5, श्रीलंकन रुपी 441.57, बांग्लादेशी टका 162.52 एंड 85.57, अफगानी यूएस डॉलर्स 1.32।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
3: LIKA Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £101.05 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

किसने जीता है इस आवर में. मीना फ्रॉम क्रॉयडन, अवर टीम विल गेट इन टच विद यू एंड यू विल हैव टू गो एंड कलेक्ट योर बॉक्स, स्वीट बॉक्स फ्रॉम दैट नियरेस्ट ब्रांच एज वेल. सो ये गीत भी किसी की पसंद थी, किसकी पसंद मैं नहीं.

0: सिर्फ £35. जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
3: Latke halo ne nandala.
2: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
3: Meetha khara, khara.
2: Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now. Good news! आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
4: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
5: This is Leica.

0: Vintage Gold, every weekend with Sandy Shah. WhatsApp message Like a Gold now on 0744-232323.
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: start right here, 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
1: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026 अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हेज UB3 1AR में भजन आरती सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी रजिस्टर नाउ एट shrijagannath.uk/events/rath-yatra2026 जय श्री जगन्नाथ लंदन गुड न्यूज आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद बेटर प्राइसेस परफेक्ट फॉर रिटेलर्स ट्रेडर्स टेकअवेज एंड केटरर्स आईटेक इज ओपन 24/7 विद फ्री पार्किंग फुल अटैक एट यूनिट 123 साउथ ब्रिज वे साउथ हॉल UB2 4AX वंस यू विजिट यू कम अगेन एंड अगेन
2: ears are great aren't they one on each side of your head for stereo It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
3: Welcome to the jungle.
1: Film, bilkul fake.
3: Hamari film army wali.
4: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
1: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो
3: और स्टार कास्ट है
1: अक्षय कुमार सुनील शेट्टी अर्शद वारसी परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास
5: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या
1: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून
6: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
7: मैं किस लिए फिल्म में
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
8: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course लंच सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
9: This Father's Day Sunday, Leica Radio Network teams up with Ambala Sweets.
10: I love you, Daddy.
9: For you to win a box of mixed mitai. Every hour, every station, on the Leica Radio Network. Vintage Gold, on Leica Gold. Leica Radio Network, broadcasting across Greater London. Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. WhatsApp message Leica Gold now on 0744 23 23 23.

हुई है जब से शादी पड़ गए हैं हम तो मुश्किल में, कहें किससे तड़पती हैं हजारों हसरतें दिल में।

0: Vintage Gold with Sandy Shaw. This is Leica Gold.
1: Welcome to the jungle.
2: Film बिल्कुल fake.
1: हमारी film army वाली.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड अ ह्यूज स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
5: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में.

0: biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights. Like a Gold on 10:35 AM.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल Atoll protected.
3: Welcome to the jungle.
4: Film? बिल्कुल fake.
3: हमारी film army वाली.
5: और उसके लिए आप सभी को training की जरूरत है.
4: Danger? एकदम real. और survival skills? Zero.
3: और star cast है?
4: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल and a huge star cast bring jungle madness to cinemas.
6: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने gun पकड़ा था क्या?
4: Welcome to the jungle in cinemas 26 June.
7: अरे तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
8: मैं किस लिए फिल्म में?
9: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala. Bala style.
4: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
10: Lattu ke halo ne nandala.
4: At Watford Colosseum on Saturday, 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue.
10: Meetha khara,
4: Watford Colosseum on Friday, 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now. Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
11: in Dubai.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a Radio और Like a Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. On air हो, online या on ground, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@lykaradio.com.
14: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
4: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.